0: बोट ये आशा, ये बोट ये आशा।
1: राजू राजू, अरे उड़म्बू सुड़ दे राजू राजू, उनके नल्ले जोर रखे।